0: मन करा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा

कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: It's happening, baby.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
2: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव पी शुनगुमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VP रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट UG परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट UG के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर SP कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसिलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व

0: में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देशबंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, अब QR कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय NR कांग्रेस प्रमुख N रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर म्यूजिकली योर्स। FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। मैं हूँ आपका RJ दोस्त रेहान। स्वागत है आप सभी का। कार्यक्रम मस्त मुंबई लेकर मैं हाजिर हूँ। तो चलिए आगाज करते हैं आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम का इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू शर्तें लागू आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.

हर फिल्म की होती है एक कहानी और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी, मूवी माइलस्टोन। हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां पद्मश्री भावना सोमाया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे FM रेनबो 107.1 FM पर मूवी माइलस्टोन।

8:53 सुबह के दोस्तों, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर म्यूजिकल योर्स। मैं हूं आपका आरजे दोस्त रेहान, मस्त मुंबई कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूं। और अभी आपने जो गीत सुना वो बहुत ही कमाल का गीत है, फिल्म कुछ कुछ होता है से था। और जैसा कि आप जानते हैं, आज है 13 मई बुधवार, और मस्त मुंबई के इस कार्यक्रम में आज का सेगमेंट है मुंबई के मतवाले। और इस मुंबई के मतवाले में हम बात करते हैं मुंबई के लोकल ट्रेनों की और उससे जुड़े कुछ दिलचस्प और शानदार किस्सों की। तो चलिए, आगाज़ हो चुका है इस कार्यक्रम का हिंदी सिनेमा के कुछ बेहतरीन नगमों के साथ। मैं हाजिर हूँ आपका आरजे दोस्त रेहान, और आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे मुंबई लोकल के इतिहास की। जी हाँ, मुंबई लोकल से तो आपका वास्ता रोज़ ही होता है, लेकिन क्या मालूम है पहली मुंबई लोकल मुंबई में कब चली थी? ये गीत सुनिए, उसके बाद ढेर सारी बातें होंगी आपसे। यूं ही सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। म्यूजिकली योर्स।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
4: सुबह के 9 बज चुके हैं दोस्तों, और मैं हूं आपके साथ आपका आरजे दोस्त रेहान। स्वागत है आप सभी का। अभी आपने किशोरदा की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गीत आराधना फिल्म से सुना, एसडी वर्मन का संगीत, और उस गीत को लिखा था आराधना की आनंद बख्शी ने। और मुंबई लोकल की अगर हम बात करें, या मुंबई में पहली लोकल कब चली, उससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि देश की पहली ट्रेन जो है कहाँ चली थी। ये मुंबई और महाराष्ट्र के लिए सौभाग्य की बात है कि भारत की यानी कि देश की पहली ट्रेन जो है वो मुंबई में ही चली थी, मुंबई और थाने के बीच। तो देश की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली, वो भी मुंबई के बोरी बंदर से थाने तक। जी हाँ, करीब 400 लोगों को लेकर चली इस ट्रेन ने। तब मुंबई से थाने के बीच करीब 34 किलोमीटर की यात्रा जो है तय की थी, और करीब 1 घंटा 15 मिनट का समय लगा था 34 किलोमीटर का सफ़र तय करने में। और इस ट्रेन को चलाने के लिए ब्रिटेन से ख़ास तौर पर 3 भाप के इंजन मंगवाए गए थे, और तीनों इंजनों के नाम भी रखे गए थे, और ये नाम थे सुल्तान, सिंधु और साहिब। जी हाँ, देश की पहली जो ट्रेन थी ये तीनों इंजन उसे खींच कर लेकर गए थे मुंबई के बोरी बंदर से थाने तक। तो 1853 16 अप्रैल, जी हाँ, पहली ट्रेन चली, और उसके बाद ये कारवां, ये सिलसिला यूं ही शुरू हुआ, और धीरे धीरे ट्रेनों का विकास हुआ, और फिर मुंबई लोकल ट्रेन जो है चली यात्रियों की। जैसा कि आप जानते हैं, मुंबई जो है वो कपड़ा मिलों का केंद्र रही है, और शुरुआती में यहाँ पर काम करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते थे, तो लोगों के आने जाने के लिए, व्यापार करने के लिए ज़रूरत पड़ी, और फिर धीरे धीरे जो है विकास होता गया, और फिर लोकल ट्रेन के रूप में वो चीज़ आई, ट्रॉम चले, और उसके बाद ईएमयू के रूप में लोकल ट्रेन चली, और धीरे धीरे ये सिलसिला शुरू हो गया। उदित नारायण, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाज़ों में ये अगला ट्रैक एंजॉय करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एफएम रेनबो पर।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: अभी आपने बहुत ही खूबसूरत गीत सुना सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर। और अगर हम बात करें देश की पहली ट्रेन जब

शुरू की जा रही थी और 16 अप्रैल का वो दिन बेहद ही ख़ास था। लोगों का हुजूम जो है उमड़ पड़ा था वो लम्हा देखने के लिए, और ये मौका ना सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत बल्कि भारतीयों के लिए भी बेहद ख़ास था, क्योंकि सरकारी सतह पर इस मौके को यादगार बनाने के लिए और शानदार बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई थी और नई ट्रेन को तोपों की सलामी दी गई थी। और यह फैसला हुआ कि जब नई ट्रेन की शुरुआत होगी तब तोपों की सलामी दी जाएगी, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त जब तोपों की सलामी दी गई तो 21 तोपों की सलामी देकर जो है स्वागत किया गया था उस लम्हे का। तो सोचिए वो लम्हा कितना यादगार रहा होगा।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
2: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
3: दोस्तों, देश में पहली ट्रेन जब चली और उसके बाद धीरे धीरे भारतीय रेल का नेटवर्क बढ़ता गया, तीन लाइन नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज पर ट्रेनें चलने लगीं। 1 मार्च 1969 को भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन ब्रॉड गेज लाइन पर चलाई गई। यह ट्रेन दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी और मुंबई में भी धीरे धीरे रेलवे लाइन का विस्तार किया गया। 9:16 और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं इसके लिए

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: 9:27 और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। कार्यक्रम चल रहा है मस्त मुंबई और मैं हूं आपके साथ आपका आरजे दोस्त रेहान। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में ये जो गीत अभी आपने साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ सुना, इसे अपने संगीत के जादू से सजाया था आर डी बर्मन ने और फिल्म थी द बर्निंग ट्रेन। और अगर हम लोकल ट्रेनों की बात करें या देश की पहली ट्रेन जब चली थी तब की बात करें तो एक फैन क्लब इंडियन रेलवे की है और उसका जो एक संस्था है उसकी वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक ये जो पहली ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में, ये इसके जो डब्बे थे वो लकड़ी के बने हुए थे और वो ज़माना अलग था। तो दूर से देखने पर माचिस की डिब्बी की तरह ये ट्रेन लग रही थी और लोगों का जोश अलग था। कहा यह जाता है कि 34 किलोमीटर का जो ये सफ़र था, दो स्थानों पर ये ट्रेन ने अपना जो रुकावट थी, जो स्टाप था, दो स्टेशनों पर ये ट्रेन रुकी थी बोरीबंदर से चलने के बाद। ये पहला जो पहली बार जब ये ट्रेन यहाँ रुकी पहले स्टाप पर वो था भायखल्ला स्टेशन और दूसरी बार जब ये रुकी तो वो स्टेशन था सायन। जी हाँ, तो सायन और भायखल्ला स्टेशनों पर ये जो पहली ट्रेन थी ये दो स्टेशनों पर रुकी थी और इसके बाद अपने गंतव्य पर रवाना हो गई थी। 34 किलोमीटर की इस यात्रा का सफ़र इस पहली ट्रेन ने पूरा किया था और एक नया इतिहास रच दिया था इस ट्रेन ने। और उसके बाद आज आलम यह है कि इंडियन रेलवे देश की सबसे बड़ी जो रेल नेटवर्क है उसमें एक है।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 9:40 और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM Rainbow चैनल 107.1 MHz. म्यूजिकली ओर्स. अभी आपने ये बहुत ही खूबसूरत गीत सुना. और अगर बात करें हम पश्चिम रेलवे की पहली लोकल ट्रेन की, तो ये ट्रेन जो है विरार से बैकबे स्टेशनों के बीच 12 अप्रैल 1867 को चली थी. शुरुआती दिनों में ट्रेन भाप के इंजनों से चली और उसके बाद समय जैसे जैसे बदलता गया, लोग बढ़ते गए, यात्रियों की संख्या बढ़ती गई, शहर के हिस्से में ट्रांसपोर्ट का काम ट्राम और बेस्ट बसों से हो रहा था, इसलिए लोगों की भीड़ जब बढ़ने लगी तो फिर सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेन यानी कि EMU की शुरुआत की गई. और फिर धीरे धीरे लोकल ट्रेनों का सिलसिला मुंबई में यूं ही शुरू हो गया.

0: Chennai FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: Cosmos Digital Banking Seva, aasan aur surakshit.
0: Internet banking,
1: mobile banking,
0: WhatsApp banking,
1: eKYC,
0: NEFT, RTGS,
1: IMPS,
0: Cosmos Rupee aur Visa Debit Card,
1: UPI jaise kai sare digital sevaon ka laabh lene ke liye aapka account Cosmos Bank mein zarur hona chahiye.
0: Cosmos Cooperative Bank, enriching life.
1: Apne vyapar ki pragati ke liye aur vistar ke liye Cosmo Udyog Loan.
0: 3 crore tak ki aarthik sahayata, laghu evam madhyam vyapariyon ke liye cash credit ke roop mein loan uplabdh.
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए. इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू. शर्तें लागू. आज ही संपर्क करें.
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ.
2: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स.
3: मस्त मुंबई कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मुंबई की लोकल ट्रेनों की और उसके इतिहास की. जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, ट्रेन लंबी होती गई और 3 फरवरी 1925 को उस समय के मुंबई के गवर्नर सर लेल्सी विल्सन ने पहली 4 डिब्बों की ईएमयू सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था. और इसके अलावा पहली ईएमयू सेवा जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से हर्बल लाइन पर कुर्ला तक चलाई गई थी. और इसके अलावा पश्चिम रेलवे की बात करें तो यहां पर पहली ईएमयू 1928 में कोलाबा से अंधेरी के बीच शुरू की गई थी. सुरेश वाडकर और साथियों की आवाज़ों में ये है विधाता फिल्म का गीत.

विधाता फिल्म का एक गीत सुरेश वाडकर और अनवर की आवाज़ें थी और कल्याण जी आनंद जी की धुन। 9:51 सुबह के और मस्त मुंबई चल रहा है। समय के साथ साथ लोकल ट्रेन के डिब्बे जो है वो डिमांड के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए। पहले 4 डिब्बों की शुरुआती दौर में चली थी, फिर 6 डिब्बों का हुआ और उसके बाद 9, 12 और अब आजकल 15 डिब्बों की लोकल चल रही है। 1927 में मेन लाइन और हर्बल लाइन पर एक ट्रेन में डिब्बों की संख्या बढ़ाकर 8 कर दी गई थी और पश्चिम रेलवे पर 28 अप्रैल 1952 में 6 डिब्बों का नया रैक चलाया गया और 1958 में यह ट्रेन 9 डिब्बों में बदल दी गई। इसी तरह मध्य रेलवे पर पहली 9 डिब्बा ट्रेन जो 1961 में चली थी और अगर आज कल के दौर की हम बात करें तो ये 15 डिब्बों की अब धीरे धीरे चलाई जा रही है, क्योंकि आए दिन मुंबई में जो यात्रियों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और उसी तरह यात्रियों की सहजता के लिए, आरामदायक सफ़र बनाने के लिए एसी ट्रेनों की भी शुरुआत की गई और आजकल काफ़ी तीनों लाइनों पर यूँ कहें कि एसी ट्रेन जो है लगातार चलाई जा रही है ताकि लोगों के सफ़र को आसान बनाया जा सके और उसी हिसाब से सुरक्षा दृष्टि से भी कई इंतजाम रेलवे प्रशासन और जो रेलवे पुलिस है उसके द्वारा किया जा रहा है, सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो लोगों के सफ़र को आसान बनाने के लिए नई नई तकनीकी का भी प्रयोग किया जा रहा है। शब्बीर कुमार की आवाज़ में ये गीत फिल्म कुली का।

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: सुबह के 10 बज चुके हैं दोस्तों और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर म्यूजिकली योर्स। चलिए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त के प्रमुख समाचारों पर। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक होने के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिल वेत्री कणगम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में अब टीवीकी के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इसी के साथ ही प्रमुख समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 10:02 हो चुके हैं दोस्तों और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आरजे रेहान। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एफएम रेनबो का। यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। यह समय है कार्यक्रम नमस्ते भारत का।

अभी आपने कुमार सानू और देवकी पंडित की आवाज़ों में कभी हाँ कभी ना फिल्म का ये गीत जतिन ललित के संगीत से सजा हुआ सुना। लिखा था इस गीत को मजरू सुल्तानपुरी ने। आज है 13 मई, दिन बुधवार, और अगर 13 मई के इतिहास की बात करें तो देश और दुनिया में कई घटनाएं घटित हुई थीं, जिसे जो है दिल्ली में लाल किले का निर्माण आज ही के दिन पूरा हुआ था। और आज ही के दिन यानी 13 मई 2000 को लारा दत्ता को मिस यूनिवर्स जो है चुना गया था। और इसके अलावा 1643 में आज ही के दिन चिली में विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें एक तिहाई आबादी खत्म हो गई थी। और आज ही के दिन 1648 में दिल्ली में जो है लाल किला, उसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। और आज ही के दिन 1952 को स्वतंत्र भारत की पहली संसद का सत्र शुरू हुआ था। 1962 की बात करें आज ही के दिन की, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। और 13 मई 1998 को भारत ने पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण किए। और इसके अलावा 13 मई 2000 को भारतीय साहित्य जगत के सबसे बड़े नामों में से एक आर के नारायणन का आज ही के दिन निधन हुआ था। तो 13 मई से जुड़े ये कुछ थे इतिहास की बातें। और अब सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजों में ये खूबसूरत गीत तनु बेट्स मनु से हैं।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: हर फिल्म की होती है एक कहानी और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी मूवी माइलस्टोन। हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां पद्मश्री भावना सोमैया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे FM रेनबो 107.1 FM पर मूवी माइलस्टोन।

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प.
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू.
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ.
4: सुबह के 10:15 और दोस्तों नमस्ते भारत कार्यक्रम चल रहा है और 13 मई को मनाने वाले मुख्य दिवस की अगर हम बात करें तो आज अंतर्राष्ट्रीय हुम्मस दिवस मनाया जा रहा है और जो एक ऐसे व्यंजन का सम्मान करने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है जो केवल ना कि स्वादिष्ट है बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान भी है और जिसकी जड़ें प्राचीन इतिहास की गहराई तक फैली हुई हैं। इसके अलावा मेंढक कूद दिवस भी हर साल 13 मई को मनाया जाता है. यह दिन विशेष रूप से मस्ती और खेल का प्रतीक माना जाता है और यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि छोटे जीव भी हमारे पर्यावरण का अहम हिस्सा होते हैं और हमें उनका संरक्षण करना चाहिए. इसके अलावा 13 मई को राष्ट्रीय फल रस दिवस के रूप में भी हर साल मनाया जाता है. यह दिन ताजे और स्वादिष्ट फलों के मिश्रण का आनंद लेने और उनके स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है.

करण अर्जुन फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, जिसे अपने संगीत के जादू से राजेश रोशन ने सजाया। उदित नारायण, कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें थी। 10:22 और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 MHz पर म्यूजिकल यूर्स। मैं हूं आपके साथ आपका आरजे दोस्त रेहान। नमस्ते भारत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आज के इस सेगमेंट में जो है जीते हैं शांत से व्यापारी है महिला एवं बाल जगत की। और इस विषय को अगर हम आधार माने आज के इस कार्यक्रम में, तो उन फिल्मों के गीत या उन फिल्मों का जिक्र आपसे करेंगे जो महिला प्रधान फिल्में रही हैं। और यूं तो सिनेमा की शुरुआत जो है कई शानदार महिला फिल्मों से हुई है, जिसमें मदर इंडिया, औरत, मिर्च मसाला, अर्थ, निकाह, चमेली जैसी फिल्में हैं जो लोगों को खूब पसंद आई हैं। नए ज़माने की बात करें तो इस ज़माने में भी कई ऐसी महिला प्रधान फिल्में बनी हैं, जिसमें श्रीदेवी की इंग्लिश मॉम और दूसरी फिल्में शामिल हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर ना सिर्फ अच्छी खासी सफलता हासिल की बल्कि फिल्म समीक्षकों ने भी उन फिल्मों को काफ़ी सराहा है। तो चलिए कुछ ऐसे ही शानदार महिला फिल्मों के गीत सुनते हैं, महिला प्रधान फिल्मों के गीत सुनते हैं। यह है शिल्पा राव की आवाज़ में फिल्म इंग्लिश का गीत।

0: शिल्पा राव और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने इंग्लिश फिल्म का ये गीत सुना। 2012 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की इस फिल्म की जमकर तारीफ हुई थी। ये फिल्म एक ऐसी माँ की कहानी पर आधारित थी जो कि अपने एडवांस बच्चों से थोड़ा जो है पिछड़ जाती है, और सबसे बड़ा रोड़ा उसके आगे तब आता है जब उसे इंग्लिश नहीं आती है, और यही इस फिल्म की कहानी है। और कई मोड़ आते हैं, कई इमोशनल सीन्स भी आते हैं जिसको बखूबी फिल्म के निर्देशक ने फिल्माया है, और उतनी ही बेहतरीन अदाकारी श्रीदेवी की इस फिल्म के लिए रही है। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए श्रीदेवी को कई पुरस्कार भी मिले थे।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

अमित त्रिवेदी की आवाज़ में खूबसूरत गीत अभी आपने सुना 10:35 और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का फैम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर म्यूजिकली योर्स। इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की कुछ महिला प्रधान फिल्मों की। 2014 में एक फिल्म आई थी हाईवे, इसे निर्देशित किया था इम्तियाज़ अली ने और इम्तियाज़ अली ने इस फिल्म में ऐसे मसले को उठाया था जो आप और हम कभी कभी खुद से साझा करने में हिचकिचाते हैं। बचपन में बच्चों का शोषण और उसका अर्थ नहीं समझ पाते हम, ऐसे में कई बार आपके ही आसपास के लोग उनकी इस मासूमियत का फ़ायदा उठाने लगते हैं और हमारे समाज के इस काले सच को इम्तियाज अली ने बड़ी ही शालीनता के साथ सिनेमा पर्दे पर उठाया था। और इसके अलावा अगर हम महिला प्रधान फिल्मों की बात करें तो एयर होस्टेज नीरजा भनोट की असल कहानी पर आधारित फिल्म नीरजा को कैसे भुलाया जा सकता है, इसे लोगों ने खूब पसंद किया था। निर्देशक राम माधवानी की इस फिल्म ने भी दर्शकों की वाहवाही लूटी और फिल्म में नीरजा भनोट का किरदार सोनम कपूर ने निभाया था, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। यह फिल्म भी औरत की उस छुपी हुई ताकत की बात करती है जिसे अक्सर वो खुद ही समझ नहीं पाती।

0: एनईएफटी, आरटीजीएस,
1: आईएमपीएस,
0: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स।
3: 10:45 दोस्तों, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, म्यूजिकली योर्स। और मैं हूँ आपके साथ आपका आरजे दोस्त रेहान। उम्मीद है इस प्रोग्राम को आप जरूर इंजॉय कर रहे होंगे। और कार्यक्रम के इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं कुछ महिला प्रधान फिल्मों की। 2016 की बात करें तो इसमें फिल्म आई थी पिंक, जिसे अनुद्ध राय चौधरी ने डायरेक्ट किया था, और इसमें अमिताभ बच्चन, तापसी पन्नू, कीर्ति कुल्हारी जैसे कलाकार थे, और ये एक बेहतरीन फिल्म थी। इसके अलावा कंगना रनावत की बात करें तो उनकी फिल्म क्वीन और तनु बेट्स मनु जैसी फिल्में हैं। और सुजॉय घोष की बात करें तो उनकी कहानी सीरीज़ की जो फिल्में हैं, जिसमें विद्या बालन ने सशक्त किरदार निभाया। और इसके अलावा दूसरी कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें जो है महिलाओं को सशक्त किरदार में दिखाया गया है। इनमें दामिनी, चांदनी बार, अर्थ, चमेली, आंधी, मिर्च मसाला, भूमिका एक फिल्म थी, नो वन किल्ड जेसिका ही है, द डर्टी पिक्चर, क्वीन, थप्पड़, और राजी आलिया भट्ट की मर्दानी सीरीज़ की फिल्में कहानी और पीकू, नीरजा के अलावा दंगल और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्में हैं आज के दौर की फिल्में, जो महिला प्रधान फिल्में, एक बेहतरीन फिल्में कही जा सकती हैं। फिलहाल कार्यक्रम के इस मोड़ पर सुनते हैं दंगल फिल्म का ये गीत, जो तीन बेटियों पर आधारित थी और उन्हीं की कहानी को आधार मानकर जो है ये कहानी जो है आगे बढ़ाई गई थी।

दोस्तों, सोशल मीडिया के इस जमाने में एक अजीब सा कंपटीशन चल रहा है, बेटर दिखने के लिए, बेटर लगने के लिए, बेटर प्रूफ करने के लिए। हर कोई हाईलाइट

0: मोला होना, खुद की तरह जीना। आपको किसी और की कॉपी बनने की जरूरत नहीं है, ना किसी ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो करने की। यूथ का मतलब है इंडिविजुअलिटी, अपनी आवाज पहचानना, अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना और अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करना। सो आज खुद से एक प्रॉमिस करो, कंपैरिजन से ब्रेक फ्री होंगे, वैलिडेशन से ब्रेक फ्री होंगे और खुद को एग्जैक्टली वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसे हम हैं।
1: आज हम फैज़ अनवर फैज़, जो कि बहुत बड़े हिंदी के शायर हैं, उनको याद कर रहे हैं। तो उन्होंने जो तुमने कहा गंधर्व, उसको लेकर एक बहुत खूबसूरत बात कही है। वो कहते हैं, मैं दिल की बात कहूँ या वो मेरी सुन ले, कहीं तो बात बने कोई सिलसिला निकले।
0: वाह, क्या बात है।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: हर फिल्म की होती है एक कहानी और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी, मूवी माइलस्टोन। हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां पद्मश्री भावना सोमाया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे FM रेनबो 107.1 FM पर मूवी माइलस्टोन।

0: हैदराबाद की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: दोस्तों, हम में से कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं अभी टाइम नहीं है, अभी सही टाइम आने दो, जब सब परफेक्ट होगा ना तब मैं शुरू करूंगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं शुरू करूंगा, जब रिसोर्सेस होंगे तब सपने पूरे करेंगे। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट टाइम आता ही नहीं है। हर सक्सेसफुल शुरुआत थोड़ी मेसी होती है, थोड़ी अनसर्टन होती है। यूथ का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का वक्त है, गलतियां करने का वक्त है, और उन्हीं गलतियों से ग्रो करने का वक्त है। तो अगर आप किसी शुरुआत को टाल रहे हो तो आज ही पहला कदम उठाइए। और यूथ क्यों, किसी भी एज में आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं का होता है जो इंतजार नहीं करते, एक्शन लेते हैं। सो ब्रेक फ्री फ्रॉम वेटिंग।
1: और हमारे बड़े बुजुर्ग तो हमेशा से ये कहते आए हैं, और वो कालजयी सत्य भी है कि कल करे सो आज कर,
0: आज करे सो अब कर।

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 107.1 MHz पर यह है आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल. FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर सुन सकते हैं. इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह कार्यक्रम इस वक्त सुन सकते हैं. दोपहर के 12 बज रहे हैं. पेश है इस वक्त की कुछ खास खबरें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिलों का आकार काफी कम कर दिया है. विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं. सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी, गुजरात और असम की उनकी हालिया यात्राओं के दौरान लागू कर दी गई थी. इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुनीगो ने आज सुबह नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पाचारण किया है. वे कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आ रहे हैं. बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर करेंगे. अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता एन. रंगसामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगसामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए. नमस्सियम ने भी समारोह के दौरान मंत्री पद की शपथ ली. नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप की जांच के लिए CBI टीम जयपुर पहुंची और राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग 2 दर्जन लोगों से पूछताछ की. इसी बीच जांच के तहत SOG ने सीकर और आसपास के इलाकों में सैकड़ों लोगों से पूछताछ की है. ये थी इस वक्त की कुछ खास खबरें.

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 107.1 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल. एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर सुन सकते हैं. इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह कार्यक्रम इस वक्त सुन सकते हैं. दोपहर के 12:04 हो रहे हैं दोस्तों और प्रस्तुत है कार्यक्रम म्यूजिक कैफे. एक बार फिर से सभी श्रोताओं को माया का प्यार भरा नमस्कार और मेरे साथ है गंधर्व.
2: हेलो दोस्तों.
1: हेलो दोस्तों.

0: हेलो दोस्तों, बचपन में हम सब कितने जिज्ञासु होते हैं ना, क्यूरियस। ये क्या है, वो कैसे होता है, आसमान नीला क्यों है, हर चीज को जानने का एक अलग ही उत्साह होता है। फिर धीरे धीरे बड़े होते गए और जॉब याद करने लगे, सवाल पूछना ही भूल गए। लेकिन ग्रोथ का असली राज सिर्फ नॉलेज में नहीं, क्यूरियोसिटी में होता है, जिज्ञासा में होता है। जो लोग सवाल पूछते रहते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिविटी जन्म लेती है क्यूरियोसिटी से।
1: और हम देखते हैं हमेशा कि जब हमारे मन में कोई सवाल होता है तो उसके पीछे एक क्यूरियोसिटी, जैसा तुमने कहा गंधर
0: जी,
1: कि ये जो सवाल है इसका जवाब हमें कैसे ढूंढना है, क्या कहाँ ढूंढना है, ये जो रास्ता है ना, फिर ये रास्ता ही हमें मंजिल की ओर लेकर जाता है। अभी न्यूटन का ही लीजिए ना, वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठता, ना उसके ऊपर एप्पल गिरता और ना ग्रेविटी के बारे में हमें पता चलता।
0: जी जी जी, नई संभावनाएं उसी से तो जन्म लेती है। चलिए सुनते हैं अगला गाना।

0: हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

दोस्तों, आज की दुनिया में सिर्फ सीखना ही काफी नहीं है, कभी कभी जो हमने सीखा है उसे छोड़ना भी पड़ता है और फिर नए तरीके से दोबारा सीखना पड़ता है। इसी को कहते हैं लर्न, अनलर्न और रीलर्न। पहले के जमाने में एक स्किल सीख लो तो वो पूरी जिंदगी के लिए काफी होती थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी, ट्रेंड्स और दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अगर हम खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। युवाओं की सबसे बड़ी ताकत यही है, बदलाव को अपनाना, अपने सोचने के तरीके को अपडेट करना, पुरानी धारणाओं को चुनौती देना और हर नए दिन के साथ खुद को बेहतर बनाना। अगर आज कुछ नया सीखने में मुश्किल लग रहा है तो याद रखिए, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर मिलती है। चलिए इसी पॉजिटिव सोच के साथ सुनते हैं अगला ट्रैक।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: ज्यादा वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

हर फिल्म की होती है एक कहानी और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी, मूवी माइलस्टोन। हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां पद्मश्री भावना सोमैया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे FM रेनबो 107.1 FM पर मूवी माइलस्टोन।

यही उम्र होती है गलती से मिस्टेक करने की, एडवेंचर्स करने की, ट्रेक्स करने की। दोस्तों, कभी सोचा है किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचने की खुशी जरूर खास होती है, लेकिन असली कहानी उस सफर में छुपी होती है जो आपको वहां तक लेकर जाता है। वो हर कदम, हर स्ट्रगल, हर पॉज, यही तो असली एक्सपीरियंस होता है। लाइफ भी बिल्कुल ऐसी है। हम अक्सर डेस्टिनेशन के पीछे इतने भागते हैं कि जर्नी एंजॉय करना भूल ही जाते हैं। हम सोचते हैं जब ये मिलेगा तब खुश होंगे, जब वहां पहुंचेंगे तब सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन शायद खुशी मंजिल में नहीं, उस रास्ते में है जिसे हम हर रोज तय कर रहे हैं। आज थोड़ा रुकिए, अपने सफर को महसूस कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि कभी कभी जर्नी ही सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन होती है। और इसी खूबसूरत थॉट के साथ सुनते हैं अगला खूबसूरत गाना।

हर फिल्म की होती है एक कहानी और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी, मूवी माइलस्टोन। हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां पद्मश्री भावना सोमाया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे FM रेनबो 107.1 FM पर मूवी माइलस्टोन।

0: ऐसे गाने सुन के हमें लंबे सफर पर जाने का मन करता है, किसी लंबे सफर पर फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ रोड ट्रिप करने का मन करता है, पर उस रोड ट्रिप में भी हम मोबाइल पर रील्स देखते रहते हैं। कभी आपने नोटिस किया है, आजकल हम एक वीडियो पूरा देखते ही नहीं, एक आर्टिकल पूरा पढ़ते नहीं, और कभी कभी तो एक विचार पर भी ज्यादा देर टिक नहीं पाते। अटेंशन स्पैन आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। नोटिफिकेशंस, रील्स और लगातार स्क्रोलिंग, हर पल कुछ ना कुछ हमारा ध्यान खींचता रहता है।
1: मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास इतने सारे व्यवधान हैं कि हम कहीं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते अपने आप को। और पता है, एक सर्वे इन दिनों किया गया तो ये पाया गया है कि लोगों का ध्यान खींचने के लिए या फिर कहीं पर उन्हें हुक्ड अप रखने के लिए, इंगेज रखने के लिए सिर्फ एक मिनट का ही समय है। मतलब आप देख पाओगे कि जो रील्स होती हैं, जो शॉर्ट्स होते हैं, वो केवल एक मिनट या फिर उससे भी कम समय के होते हैं। उससे ज़्यादा लंबे होंगे तो आप खुद बोर हो जाते हो और फिर कहते हो नहीं नहीं इसमें मज़ा नहीं आ रहा, चलो आगे चलते हैं। तो ये जो स्क्रोलिंग वाली बात तुमने की ना गंधर्व, यही वही है। तो कहीं ना कहीं फोकस जो हम अपना बढ़ाने की कोशिश करने की जब कोशिश करेंगे तब जाके मामला कहीं थोड़ा सीरियस बनेगा। और इसीलिए ना ये जो कंसंट्रेशन वाली बात हमें लगातार बताई जाती है वो यहाँ पर बहुत अहमियत भरी साबित लगती है।
0: जी बिल्कुल, जो इंसान गहराई से ध्यान लगा सकता है नॉलेज नहीं फोकस पे, नॉलेज तो महत्वपूर्ण है ही है पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका फोकस, कंसंट्रेशन, उसके बाद ही आपको नॉलेज मिल सकता है, वही कुछ बड़ा और अर्थपूर्ण आपको बना सकता है। तो कभी कभी फोन को थोड़ा दूर रखना भी जरूरी है, अपने विचारों के साथ थोड़ा समय बिताना भी जरूरी है, क्योंकि जब ध्यान मजबूत होता है तो सपने भी साफ दिखने लगते हैं। तो स्क्रोलिंग से थोड़ा ब्रेक लीजिए और अब अपना पूरा ध्यान लगाइए इस अगले शानदार गाने में।

12:53 हो रहे हैं दोस्तों, म्यूज़िक कैफ़े कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले अगले कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी। जी हाँ, आप जान

हैं हमारा अगला कार्यक्रम क्या होता है। 1:03 पर आप सुनते हैं हिट एंड हॉट कार्यक्रम और इसमें आप अपनी फरमाइशें सुनते हैं और उसके लिए आपको करना क्या होता है, जी हाँ, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज भेजना होता है। मैसेज क्या करना है आपको, मैसेज ये करना है कि आपको जो गीत सुनना है वो गीत के बोल, फिल्म का नाम, आपका नाम, ये सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करनी है। और व्हाट्सएप नंबर क्या है, व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। एक बार फिर से दोहराए देते हैं, 8657661071, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं। तो चलिए म्यूजिक कैफे का आखिरी नगमा और उसके बाद ठीक 2 बजे आप सुनेंगे समाचार।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल. एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर सुन सकते हैं. इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर यह कार्यक्रम इस वक्त सुन सकते हैं. दोपहर के 1:05 हो रहे हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम आपका पसंदीदा कार्यक्रम हिट एंड हॉट. एक बार फिर से सभी श्रोताओं को माया का प्यार भरा नमस्कार और गंधर्व भी मेरे साथ है.
2: हेलो दोस्तों.
1: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं. लेकिन आप सभी जानते हैं कि आज का जो हिट एंड हॉट कार्यक्रम है आपके पसंद के प्रोग्राम गीतों का कार्यक्रम है. तो इसमें आपको करना क्या है, आपको हमें व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है 8657661071. इस व्हाट्सएप नंबर पर आपके पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, आपका नाम, ये सारी जानकारी हमें आपको व्हाट्सएप करनी है. तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं.

ऐसे ही बेहतरीन गानों की फरमाइश हमें करते रहिए। इस गाने की फरमाइश की थी रामगंज खंडवा जी ने, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। प्यार झुकता नहीं फिल्म का ये गाना था, तुमसे मिलकर। और मुझे आपको एक सवाल पूछना है, कौन से गाने सुन के आपको आपके कॉलेज डेज याद आते हैं? हमें व्हाट्सएप पे बताइए और वो गाना भी भेज दीजिए जिससे आपको कॉलेज डेज याद आते हैं। चलिए अगला गाना सुनते हैं।

बहुत खूब गाना। इस गाने की फरमाइश की थी फिरोज सिगानपुरिया ने। अगला गाना सुनते हैं। अगले गाने की फरमाइश की है अजय साखरे जी ने, इंदौर के रहने वाले अजय साखरे जी। चलिए आपका गाना सुनते हैं।

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: स्वागत है आपका हिट एंड हॉट सेगमेंट में. मैं हूं आरजे गंधर्व और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 एफएम. हमने जो पहला गाना सुना था वो उसकी फरमाइश की थी पंकज मोहड़ जी ने. अमरावती के रहने वाले हीरो फिल्म का ये गाना था, बहुत ही बेहतरीन गाना. चलिए अगला गाना सुनते हैं.

इस गाने की फरमाइश की थी प्रणव शिंदे जी ने मान खुर्द मुंबई से। ये फरमाइश भी बहुत बेहतरीन थी, इसमें कोई शक नहीं। चलिए अगला गाना सुनते हैं, ये इस सेगमेंट का आखिरी गाना होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी बातें सुन के, आपकी यादें सुन के और आपके पसंद के गाने सुन के। वापस मिलेंगे जल्दी ही। आप सुन रहे हैं FM Rainbow 107.1 FM।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों

0: भागोल विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
4: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली दो दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए

0: भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज़ हवा

के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: सोनू निगम श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे थे मैं हूं ना का टाइटल ट्रैक। 5:08 हो रहे हैं, आप ट्यून्ड इन हैं ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर। हमारा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है लव यू जिंदगी। मेरा नाम है सोनम और आज मैं स्टूडियो में अकेली नहीं हूं, मेरे साथ है

0: है हमारी को आरजे
1: उर्वशी। हाय।
0: हेलो उर्वशी, आप कैसे हो?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं भी ठीक हूँ। थोड़ी सी गर्मी है बाहर, पर ठीक है। अब जब हम स्टूडियो में आ गए तो थोड़ा ठीक लग रहा है।
1: ठीक ही लग रहा है, पर मई के महीने में तो हमको कंप्लेन करने का कोई अधिकार ही नहीं है।
0: बिल्कुल सही है, एटलीस्ट बम्बई जैसे शहर में तो बिल्कुल ही
1: नहीं है। लेकिन बाकी शहरों के न्यूज जो हम पढ़ते हैं कि हर जगह पर रेड येलो ऑरेंज सारे अलर्ट दे दिए हैं,
0: हाँ, बिल्कुल
1: उस हिसाब से तो आज थोड़ा वेदर
0: ठीक ठाक है। बाहर मुझे लगता है थोड़ा सा क्लाउडी है। अब ये तो हम बात कर रहे हैं साउथ बॉम्बे की, मुझे नहीं पता कि बाकी के शहर में क्या हाल चल रहा है। तो आप जहां से भी हैं फिलहाल हमें सुन रहे हैं, बताइए आपके शहर का हाल कैसा है। 8657661071 है हमारा नंबर। और क्योंकि शो की शुरुआत जस्ट अभी अभी हुई है तो हम भी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, लिसनर्स को थोड़े अच्छे अच्छे गाने सुनाते हैं और फिर आते हैं वापस उनसे बातें करने।
1: जी हाँ।
0: ओके, सो आपको कहीं नहीं जाना है, ट्यून्ड इन रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नीरज श्रीधर कविता सेठ की आवाज में आप सुन रहे थे कॉकटेल से ये वाला गाना 524 बाय द स्टूडियो क्लॉक। आप ट्यून्ड इन है ऑन एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। शो चल रहा है लव यू जिंदगी और मेरी बंधु उर्वशी स्टूडियोज में है मेरे साथ।
2: आज हम बंधु और दोस्ती की बातें कर रहे हैं और अच्छा है कि हम दो हैं स्टूडियो में आज। हाँ, तो मजा आ रहा है
1: बहुत क्योंकि काफी चेंज आ जाता है जब दो आरजेज एक साथ मिलते हैं। yes. बातें करते हैं। ऑफ कोर्स लिसनर्स के लिए भी काफी वैरायटी मिल जाती है और
2: आई एम श्योर लिसनर्स भी ये कम्युनिकेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, उनको भी मजा आ रहा होगा।
1: आई एम होपिंग सो। आप बता सकते हैं आपके व्यूज अबाउट उर्वशी एंड सोनम साथ में लव यू जिंदगी करते हुए। पर उर्वशी एक चीज है, मुझे आपके साथ भी बात करनी थी अबाउट इट कि आजकल हमारी लाइफ में हम एआई का यूज काफी कर रहे हैं, तो तुम और मैं यानी कि हमारे अलावा एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो गई है जो कि एआई है।
2: yes.
1: तो उसके बारे में आपके क्या ख्याल है?
2: मैं सच बताऊं ना तो मैं अपने आप को ना थोड़ा सा बचा के रखना चाहती हूं अभी तो।
1: हाँ,
2: क्योंकि एआई ने ना आई एम श्योर जॉब बहुत इजी कर दिया है।
1: yes.
2: लेकिन कुछ कुछ चीजों में थोड़ा सा लेजी भी कर दिया।
1: आई अग्री।
2: हाँ, तो अब कोई ईमेल भी खुद नहीं लिखता।
1: बिल्कुल।
2: तो मैं इसको लेके थोड़ा सा अभी ऐसा है ना कि ना बहुत ज्यादा नेगेटिव हूँ ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि एग्जैक्टली इससे हमारी लाइफ के कौन से जो
1: बेनिफिट्स हो
2: सकते हो, आप उस पे इफेक्ट होगा नहीं होगा, लेकिन आई एम श्योर कि आगे वाले समय में इसको आप अवॉइड तो नहीं कर सकते हो।
1: अवॉइड तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बट मुझे लगता है एफिशिएंटली यूज कैसे करना है ये एक चीज हम सबको सीखनी चाहिए। जैसे आप कह रहे थे कि मेल्स के लिए यूज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑफिस में ऑफकोर्स आजकल कोई दिमाग लगाता ही नहीं है।
2: yes.
1: बस डाल दो उसको चैट जीपीटी में एंड एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा, आप उसको कॉपी पेस्ट करके वहां पे चिपका दो और फिर बाद में लोग कंप्लेन करते हैं कि अरे एआई हमारी जॉब खा रही है। सो ये फायदे हैं नुकसान हैं आपके लिए ये क्या है आपको हमें बताना है। 8657661071 है हमारा व्हाट्सएप नंबर, इसके पर आप हमें बता सकते हैं। जब तक आपके लिए आ रहा है ये अगला वाला गाना, दिस इज फ्रॉम द मूवी जाने तू या जाने ना, एआर रहमान की आवाज में है ये गाना। एंड इसके बाद आएगा एक छोटा सा स्पॉट ब्रेक, उसके बाद फिर एक गाना और फिर हम आएंगे वापस आपसे थोड़ी बातें करने अबाउट एआई एंड चैट जीपीटी। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए इसी रेडियो स्टेशन पर।
2: आप चैट जीपीटी बोल सकते हो? अच्छा, हमको बोला था गूगल नहीं बोल सकते।
3: क्या बोलोगे? सोशल मीडिया? कितना बोलोगे सोशल मीडिया? ऐसे सब नहीं, सर्च इंजन लोगों को नहीं समझ।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: So ऑन एयर तो जोड़ी चल रही है उर्वशी और सोनम की. 5:43 हो रहा है अभी फिलहाल स्टूडियो क्लॉक पे.
2: हाय, कैसे सब?
1: सारे ठीक है, बस गर्मी से थोड़े परेशान है, बेहाल है, जो हम पहले बात कर रहे थे.
2: आई एम श्योर कुछ कुछ रिस्पांस भी आए होंगे.
1: हाँ हाँ, बिल्कुल. काफी रिस्पॉन्सेज आए हैं हमको. वैद्य ही ने मैसेज किया है हमें पंकज का मैसेज आया है, प्रणव का मैसेज आया है, विजेंद्र ने मैसेज किया है. उन्होंने तो लिटरली 43 डिग्रीज का जो उनका फोन का जो स्क्रीनशॉट है वो भेजा है हमको कि देखो अकोला में इतनी गर्मी हो रही है. प्रदीप अनंत कृष्ण ने हमें मैसेज किया है.

0: सो मैसेजेस बहुत सारे हैं. ऑफकोर्स जो 43 डिग्रीज का जो स्क्रीनशॉट है वो भी यू नो समवेयर हमें लिंक करता है एआई की तरफ. तो बहुत सारी चीजें आसपास हम बात कर रहे हैं. हमने ये भी पूछा था कि
1: हाँ, क्योंकि पहले जो चीजें ढूंढ पाना एक काम होता था, अब वो चीजें इतनी इजीली मिल जाती है. क्योंकि पहले जब हमको जानना होता था कि कितना टेम्परेचर है तो हम न्यूज़ चैनल पे नीचे कॉर्नर में देखते थे या फिर किसी से पूछते थे. अब हमारा फोन ही हमको बता देता है कि 45 डिग्री है, 46 डिग्री है,
0: वो भी एकदम रियल टाइम में.
1: रियल टाइम में,
0: क्योंकि पहले तो मुझे पता है कि न्यूज़पेपर्स में हम चेक करते थे कि होने वाला तापमान क्या रहेगा पूरे दिन का, शाम को कितना होगा, सुबह कितना होगा, एंड वही सुन के व्यूज़ भी लाइक अरे ओके
1: कल नहीं जाना है. अभी तो हमारा फोन हमको एक घंटे में नोटिफिकेशन भेज देता है कि शायद क्लाउडी हो सकता है.
0: yes.
1: तो आप छाता लेके निकलो.
0: बिल्कुल. एंड यही बातें कर रहे थे कि कैसे एआई का होना जरूरी भी है बट एट द सेम टाइम ज्यादा यूज भी थोड़ा अच्छा नहीं है फॉर ह्यूमन इंटेलिजेंस. आपके भी व्यूज कुछ ऐसे ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे जैसे आप बता रहे हैं हमें, पर उसकी कुछ कुछ हानि भी है. क्योंकि कभी कभी हमारा जो इंटेलिजेंस है हम उसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, क्योंकि आई थिंक हम उससे भी ज्यादा सोच सकते हैं. हमारे सोचने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि हम ऑलरेडी डिपेंडेंट हो गए कि ये हमको ये करके दे देगा, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. सो वो जो लिमिटेशन आता है मुझे लगता है वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एआई.
1: शायद हम एज अ ह्यूमन फिर ग्रो ही ना करें.
0: राइट. क्योंकि अगेन सोचने का काम तो एआई कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं?
1: हम गाने सुन रहे हैं.
0: हम गाने सुन रहे हैं, हम गाने सुना रहे हैं. और जो अगला गाना है ये भी एक जोड़ी वाला गाना है. देयर आर टू फीमेल सिंगर्स, प्रीति एंड पिंकी है. मुझे कुछ कहना है फिलहाल नहीं, मुझे गाना प्ले करना है. मूवी गाना मुझे कुछ कहना है और आपसे बात होगी ऑफकोर्स कुछ गानों के बाद. आपको कहीं नहीं जाना है, ट्यून्ड रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर.

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: उदित नारायण की आवाज में आप सुन रहे थे गदर से ये वाला ट्रैक। 6:02 हो रहे हैं, आप ट्यून्ड इन हैं ऑन FM रेनबो 107.1 उर्वशी और सोनम के साथ।
2: गर्मी और AI की बातें करते करते मुझे लग रहा है हमको भी थोड़ा पानी पी ही लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कोई तो AI है नहीं, यहाँ पर हम ही कर रहे हैं शो प्रेजेंट, हम ही गाने प्ले कर रहे हैं, हम ही एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। और देखते देखते देखो हम 6 बजे के इस पार भी आ गए हैं, जबकि अब 6:05 पर आप सुनने वाले हैं प्रादेशिक समाचार और उसके बाद हमारा शो अंदाजे ब्याह शुरू होगा। अंदाजे ब्याह में हम बातें करने वाले हैं कुछ सूफी नगमों के बारे में, कुछ गजल्स के बारे में, कुछ शायरी के बारे में, और इसीलिए अनदर रीजन फॉर लिसनर्स टू स्टे ट्यून्ड। और साथ ही साथ और भी गुफ्तगू होगी क्योंकि उसके बाद आएगा हम तुम, जहां पर हम प्ले करेंगे आपके रिक्वेस्ट ऑन एयर। तो जो गाने हैं वो हमारे लिसनर्स अभी से ही भेजना शुरू कर देते हैं,
2: I'm sure.
1: वो भी मैं बता देती हूँ कि 8657661071 है हमारा नंबर, और आपको ऐसे गाने रिक्वेस्ट करने हैं जो कि उन मूवी से हैं जो कि साल 2000 के बाद रिलीज हुई हो। फिर बाद में ये नहीं बोलना कि अरे हमको 90s का गाना सुनना है, 80s का गाना सुनना है, क्योंकि हम यहाँ पर नए गाने प्ले करते हैं एंड होपफुली हैप्पी गाने प्ले करते हैं।
2: yes.
1: तो ऐसे गाने ही रिक्वेस्ट करें। पर फिलहाल जैसे मैंने कहा प्रादेशिक समाचार का वक्त हो चला है, तो बस बने रहिए 10 मिनट के लिए, उसके बाद आएंगे उर्वशी और सोनम फिर से अंदाजे ब्या लेकर।
0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 6:27 हो रहे हैं, आप ट्यून इन है ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर. हमारा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है अंदाज़े बयां. अभी अभी आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज में कमीने से वाला गाना, और उर्वशी और सोनम अभी भी स्टूडियोज में हैं आपके साथ.
2: अंदाज़े बयां का ना मुझे ये घंटा बहुत अच्छा लगता है.
1: अच्छा.
2: क्योंकि आपको जो बातें करनी है वो आप करते हो, दिल की बातें.
1: हाँ.
2: और वैसे भी मुझे शेरो शायरी का ना थोड़ा सा शौक है, तो मुझे वो बातें करने का इसमें जो मौका मिलता है मुझे बड़ा मजा आता है.
1: ओहो, तो जैसे कहते हैं इरशाद इरशाद.
2: तो बशीर बद्र जी की बोल है कि तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है. तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारी ये बाद ये मौसम बहुत सताएगा.
1: अरे वाह,
2: अभी तो फरिश्तों जैसा मौसम नहीं है
1: अभी सता रहा है
2: अभी सता रहा है, लेकिन सोचो किसी का होना. हाँ. अच्छे इंसान का, आपके पसंद के इंसान का आपके साथ होना किसी भी मौसम को फरिश्तों
1: जैसा बना सकता है. बिल्कुल. एंड यही बातें अंदाज़े बयां में हम बयां करते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये जो शायरी वाला अंदाज है उर्वशी का, ये भी काफी पसंद आ रहा होगा. मुझे नहीं लगता आपने कभी उर्वशी को सुना होगा शायरी करते हुए. अच्छा, कल सुना था, कल भी आपने शायरी कही थी. वेरी गुड. चलो, तो अभी से हम उर्वशी को शायरी वाले अंदाज में सुनेंगे इन दिस एंटायर शो. एंड अगर आपकी भी कोई पसंदीदा शायरी है, गजल है, नज्म है, या आप हमें बता सकते हैं ऑन 8657661071. हम ढूंढेंगे, अगर हमारे सिस्टम में है वो गजल या नज्म तो हम प्ले करने की कोशिश करेंगे. वरना फिलहाल जो अगला गाना है वो हम प्ले करने वाले हैं. इसे गाया है AR रहमान ने विद जावेद अली एंड मोहित चौहान. ये है फ्रॉम द मूवी रॉक स्टार. आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर.

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: सोनू निगम की आवाज में आप सुने थे स्ट्राइकर से ये वाला गाना। एंड 6:45 हो रहे हैं, आप ट्यून इन है ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर। हमारा शो चल रहा है अंदाज़े बयां और उर्वशी और सोनम है स्टूडियोज में। एंड उर्वशी, ये गाना मैंने इसलिए प्ले किया था, एंड मैं मेनली अंदाज़े बयां में ये गाना आई थिंक हर

0: दो या तीन शोज के बाद एक बार तो प्ले करती हूँ, क्योंकि बहुत ही सूदिंग सा गाना है
1: और ऐसी शाम में ऐसा हाँ, गाना अगर कोई सुना दे तो हाँ, इतना अच्छा लगता है।
0: एग्जैक्टली और अंदाजे बया भी हमारा शो है जब हमारे लिसनर्स होप कर रहे होते हैं कि यू नो हम थोड़ा सा ठहराव लेकर आए इस शो yes. में थोड़े से चलो कुछ कुछ गजल्स होते हैं, थोड़े हाई बीट नंबर होते हैं, बट मुझे लगता है आज का थीम थोड़ा सेटल सा हो गया है थोड़ा सा।
1: आई नो और अच्छा भी लग रहा है ना थोड़ा सा कि बहुत समय से जैसे आप ट्रेन देखो कार देखो ये शहर बस दौड़ता ही रहता है।
0: जी बिल्कुल,
1: तो अगर कोई आके थोड़ा सा ठहराव दे दे तो हमारे लिसनर्स को भी अच्छा लगेगा।
0: और इसी बात पर आपका जो अगला
1: मैं आपको अहमद फराज़ जी का एक शेर बिल्कुल सुनाऊंगी कि कभी कभी क्या होता है ना कि चीजें बदल जाती है लेकिन जिस मौसम में कोई घटना घटी हो वो आपके जहन में रह जाती है। तो बहुत खूबसूरत बात है कि यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है कि इस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना।
0: ओहो,
1: तो लोगों को और मौसम को बदलने में वक्त नहीं लगता।
0: बिल्कुल,
1: तो हम पहले भी गर्मी की बात कर रहे थे, आई एम श्योर जैसे ही बारिश आ जाएगी लोग इसे भूल जाएंगे।
0: हाँ, और फिर या तो बारिश के जो फायदे हैं वो बताएंगे या बारिश में जब पानी की वजह से वाटर लॉगिंग हो रही है, हम अटक रहे हैं, ट्रैफिक हो रहा है, तो ये सारी बातें होंगी। बेसिकली जो कंप्लेनिंग मोड होता है हमारा वो कभी नहीं छूटता,
1: वो नहीं जाता। तो आई एम श्योर कि आपका भी ऐसा कुछ मन में है तो गाने सुनिए हमारे साथ।
0: बिल्कुल, और चिल करिए। हाँ, और क्योंकि मौसम की बात हो रही है इसलिए हम अगला गाना प्ले करने वाले हैं काबुल एक्सप्रेस से, राघव साचर की आवाज में ये गाना। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए इसी रेडियो स्टेशन पर।

0: FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 7:21 हो रहे हैं, आप ट्यून इन हैं ऑन एफएम रेनबो 107.1। हमारा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है हम तुम उर्वशी और सोनम, और यहाँ पर हम प्ले कर रहे हैं आपकी रिक्वेस्ट ऑन एयर। और ये जो गाना आपने सुना, दिस वाज फ्रॉम द मूवी रईस, अरिजीत सिंह हर्षदीप कौर की आवाज में था ये गाना। इस गाने की रिक्वेस्ट आई थी फ्रॉम प्रीति। और जो अगला गाना है हम रिक्वेस्ट ले रहे हैं, तो जो अगला गाना है इसकी रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम अरविंद कुलकर्णी। इनको सुनना है बाजीराव मस्तानी का गाना, श्रेया घोषाल एंड वैशाली मढ़े की आवाज में है ये। और इसके बाद कल होना हो का एक गाना भी प्ले होने वाला है, उस गाने को किसने रिक्वेस्ट किया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी,
2: गाने के बाद।
1: हाँ, गाने के बाद, गाना होने के बाद, क्योंकि तभी जाके लोग इंतजार करेंगे ना हमारा, वरना गाना सुन के तो टाटा बाय बाय हो जाता है। पर अगर आपको भी आपके पसंदीदा गाने सुनने हैं, यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन 8657661071 और ऐसे गाने रिक्वेस्ट करें जो कि साल 2000 के बाद वाली मूवी से हों, क्योंकि 90s, 80s, 70s के गाने हम अभी प्ले नहीं कर रहे हैं।

0: आकाश वाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: सोनू निगम, कुणाल गांजावाला, श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे थे पार्टनर्स, ये वाला गाना। और मैं और मेरी पार्टनर स्टूडियोज में हैं। हम तुम चल रहा है हमारा शो। 7:39 हो रहे हैं। आप ट्यून्ड इन है FM रेनबो 107.1 पर। आपके रिक्वेस्ट प्ले हो रहे हैं ऑन एयर। और ये जो गाना था,
2: एक बात बताऊं, ये हाँ आप बता दीजिए।
1: मैं बोल रही थी, ये जो गाना था इसे रिक्वेस्ट किया था चेतन कुमार ने, और बस रिक्वेस्ट प्ले करने की पूरी कोशिश चल रही यहाँ
2: पर। आप समझो, अब गिन के 20 मिनट रह गए हैं और इतने सारे रिक्वेस्ट में गाने आए हैं। हाँ। तो मैं अभी से जो लिसनर्स हैं उनको बोलना चाहती हूँ कि जिनके भी गाने ना हो प्ले, वी आर सॉरी।
1: एग्जैक्टली,
2: ये मुझे कर रहे हैं,
1: ये हर शो में बोलना पड़ता है, क्योंकि रिक्वेस्ट इतनी आती है कि आप किसी ना किसी के रिक्वेस्ट को नहीं प्ले कर पाते हो, क्योंकि ऑफकोर्स टाइम हमारा लिमिटेड होता है। 1 घंटे में हम क्या क्या गाने प्ले कर सकते हैं, तो वो एक डिफिकल्टी होती है।

चैलेंज रहता है, इसीलिए हम बातें कम करेंगे, हम गाने ज्यादा प्ले करेंगे. और जो अरिजीत सिंह का गाना है अगला पैडमैन मूवी से, वो प्ले करने वाले हैं. इस गाने की रिक्वेस्ट की है अजय सखारे ने, इंदौर से उन्होंने हमें मैसेज किया है. एंड इसके बाद, इस गाने के बाद आप सुनेंगे जिगर सरैया प्रिया सरैया की आवाज में एक गाना फ्रॉम द मूवी शुद्ध देसी रोमांस. और उस गाने की रिक्वेस्ट हमको की है

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतरराज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार।

0: सरकार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। CBI ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। CBI इस मामले में शुरुआती जाँच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की

0: कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the 4 European countries.
1: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत, जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
4: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है। आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म।

0: जी बिल्कुल।
1: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
1: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Ganeshwari Yadav bags a silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support price, MSP, of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. He said for the Kharif season, the estimated payout to the farmers will be 2,60,000 crore rupees. He said an estimated over 824 lakh metric tons of crops will be procured during the season.
0: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया.
4: टुडे अ मेजर डिसीजन वाज टेकन फॉर फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप. द एमएसपी हैज बीन फिक्स्ड एट कॉस्ट प्लस 50% और इवन हायर. विद दिस डिसीजन फार्मर्स विल रिसीव अ टोटल पे आउट ऑफ 2,60,000 करोड़ रुपीस. द एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट फॉर दिस ईयर विल बी 824 लाख मेट्रिक टन.
0: खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन.
3: Mr. Vaishnav said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesame. He said for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. Addressing media, Union Minister Ashwini Vaishnav said the scheme marks a major step towards accelerating India's coal and lignite gasification program.
0: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के रिजर्व्स
4: है. इंडिया हैज नियरली 400 बिलियन टन्स ऑफ कोल रिजर्व. बाय मेकिंग मैक्सिमम यूज ऑफ दिस कोल, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू गैस एंड देन यूज दैट गैस इन फर्टिलाइजर्स एंड अदर सेक्टर्स. दिस विल हेल्प टू रिड्यूस द एलएनजी इंपोर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन. एंड आउटले ऑफ 37,500 करोड़ रुपीज हैज बीन एलोकेटेड फॉर दिस स्कीम. द टोटल इन्वेस्टमेंट इन दिस प्रोजेक्ट विल बी अराउंड 3 लाख करोड़ रुपीज. And projects will be set up to gasify 75 million tons of coal.
0: Coal ko isme gasify karne ke liye projects lagenge.
3: The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera semi-high-speed double-line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Minister said, as India's first semi-high-speed rail project, the project will serve as a pioneer project, acting as a reference model for the phased expansion of semi-high-speed rail across the country. The project will be completed by 2030-31. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner and a public-private partnership. GMR Nagpur International Airport Limited will take up the transformation of Nagpur's Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport into a world-class facility. The phased development is envisaged to reach the ultimate capacity of handling 30 million passengers annually, positioning it as a key airport in central India. Prime Minister Narendra Modi has said the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for Kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers in the country. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested 5 accused persons in connection with the alleged irregularities and paper leak related to the NEET UG 2026 examination. The 5 accused persons in the case, 3 from Jaipur, 1 from Gurugram and 1 from Nasik, and several other suspects are currently being examined. The agency has also carried out searches today at multiple locations across the country based on emerging leads. During the searches and arrests, several incriminating materials and electronic devices, including mobile phones, have been seized. The agency is also coordinating with the Special Operations Group, Rajasthan, which had conducted a preliminary inquiry in the case. Prime Minister Narendra Modi's appeal to reduce the concern

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से, और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रति वर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा

है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: जी हाँ, वादे के मुताबिक हाजिर है आपकी दोस्त आरसी यानी रेखा चौधरी लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम रंगे महफिल। आज फिर कोशिश होगी गीत और गजलों के जरिए आपकी नींदें उड़ाने की, दिल की धड़कनें बढ़ाने की, भीड़ में तन्हाई और तन्हाई में भी खुशी का एहसास जगाने की। और ये कोशिश कितनी कामयाब होती है ये तो वक्त ही बताएगा और बताएंगे आप।

जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मेरे पास मैसेज आया है सौरभ अनेचा का। वो हमें लिखते हैं वेलकम बैक दोस्तों, थैंक यू सो मच सौरभ। एक और मैसेज मेरे पास देव का दिल्ली से आया है। वो लिखते हैं, हाय रेखा, गुड इवनिंग, प्रोग्राम सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। एक और मेरे पास मैसेज है राजकुमार जी का, वो भी हमें ऐप के ज़रिए सुन रहे हैं। एक और मैसेज है मेरे पास, उन्होंने सिर्फ गुड इवनिंग लिखा है, तो दोस्त ये तो बात अच्छी नहीं है ना। तो चलिए अपने मैसेज को आप पूरा कीजिए और मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ। दोस्तों अगर कहूँ दिल की बात, तो यही कहूँगी कि रात का वो पहर शुरू हो चुका है। ध्यान से सुनिएगा, रात का वो पहर शुरू हो चुका है जब रात धीमे धीमे जवान होती जाएगी। अंधियारा तो मानो किसी हसीना की जुल्फों की तरह घना होता नजर आएगा। चारों ओर खामोशियों के मेले मानो रात के सन्नाटे को बयां कर रहे होंगे। और ऐसे में गीत संगीत का साथ होना मानो सोने पे सुहागा होगा, है ना।

जी दोस्तों, एक और मेरे पास मैसेज आया है। वो आया है पंकज जी का, अमरावती महाराष्ट्र से। शुभ रात्रि आरजे रेखा मैडम जी, कार्यक्रम रंगे महफिल बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, प्रस्तुतिकरण भी बहुत अच्छा है। उन्हें ये गीत जो इससे पहले सुनाया, मेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए, उन्होंने फिल्म का नाम भी लिखा है। दोस्त, अगर आपने गूगल देव का सहारा नहीं लिया है और खुद ब खुद पहचान लिया है फिल्म का नाम और गायक आपने बिल्कुल सही लिखे हैं, पंकज उदास जी की आवाज़ थी, तो अगर अपने आप से पहचाना है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर गूगल देव का सहारा लिया है तो क्या कह सकती हूँ, ठीक है, आपकी दोस्त हूँ, कुछ और तो नहीं कहूँगी। बस ये कहूँगी कि जितने भी संगीत प्रेमी होते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि वो गायक की आवाज़ पहचान लेते हैं लेकिन फिल्म या एल्बम का नाम नहीं पहचान पाते हैं, या गज़ल किस फिल्म से ली गई है ये नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही लिखा है। तो चलिए अपने प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी दिल में ख्याल आता है, जी हाँ, आपके भी ज़रूर आता होगा। मेरे ख्याल में ये ख्याल बहुत अच्छा है कि चलो आज फिर साथ साथ चलते हैं, चलो आज फिर साथ साथ चलते हैं, अपने जज्बातों की भी बारात लिए चलते हैं, कुछ तुम कहना अपने दिल की, कुछ मैं भी कहूँगी अपने मन की, क्योंकि क्योंकि अरसा हुआ अरमानों को शक्ल नहीं दी शब्दों की, आज कह ही देना लफ्जों के जरिए तुम भी अपने दिल की। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल।

जी दोस्तों, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं, आरजे मैडम जी, गायक मनहर उदास जी का जन्मदिन है, पंकज उदास जी के बड़े भाई का। जी हाँ,

0: और आगे लिखा है उन्होंने, चलो चलो आज साथ साथ चलते हैं। बहुत बढ़िया पंक्तियाँ लिखी हैं आपने, थैंक यू सो मच। और कभी यादों में आऊँ कभी ख्वाबों में आऊँ, गीतकार का नाम भी बिल्कुल ठीक लिखा है इन्होंने, अभिजीत भट्टाचार्य। और पंकज जी, मैं आपको बता दूं कि आज मनहर उदास जी का जन्मदिन है, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि पंकज जी से तो मैं कभी मिल नहीं पाई, उनसे मिलने का सौभाग्य कभी भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मनहर जी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और सही मायनों में अगर देखा जाए तो इंसान कितनी भी ऊंचाइयों को छू ले, कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन जो ज़मीन से जुड़ के रहते हैं ना, उनकी बात ही अलग होती है। और मनहर जी भी इसी तरीके के इंसान हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे और बहुत ही पोलाइटली बोलने वाले इंसान हैं। मुझे 2 बार मिलने का उनसे मौका मिला और वाकई मुझे मिलकर बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा उनसे। एक और मेरे पास मैसेज आया है, जी हाँ, ये राजकुमार जी ने ही लिखा है कि उन्हें ये प्रोग्राम भी बहुत पसंद आ रहा है, और साथ में लिखा है वाह। एक और मैसेज मेरे पास, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का शांतिनगर सोनीपत से, उन्होंने लिखा है कि ये प्रोग्राम भी उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और प्रस्तुतिकरण और भी ज़्यादा बेहतरीन लग रही है, तो थैंक यू सो मच। और ये लिखा है उन्होंने, कहाँ से लिखा है ये बता देती हूँ आपको, शांतिनगर सोनीपत से तो लिखा ही है, साथ में उन्होंने जो लास्ट में शब्द लिखा है ना, वो लिखा है कोटि कोटि धन्यवाद। तो भाई आपको भी मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। एक और मेरे पास मैसेज आया है, उनको भी मेरा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और उन्होंने एक गाने की फरमाइश कर डाली है। तो दोस्त, आप जानते ही हैं कि फिलहाल ये जो प्रोग्राम है वो फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश करती हूँ कि कानों के ज़रिए दिल में दस्तक दे सकूँ अपनी गज़लों के ज़रिए, गीतों के ज़रिए। तो चलिए एक और सॉन्ग सुनवाने वाली हूँ आपको, लेकिन किंतु परंतु सोच रही हूँ ये कि एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, क्या कहते हैं आप? तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर लौटते हैं आपके साथ, आपके पास।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: जी दोस्तों, वैसे तो मैं हर बार आपको बता देती हूँ कि क्या फैसिलिटीज यहाँ पर हमें मिलती हैं। तो हमारे एक दोस्त हैं जो हमें मैसेज नहीं कर रहे हैं, कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं। तो दोस्त, आपने अपना नाम भी नहीं लिखा है और आपको ये बात बता दूं कि जब आप कॉल करने की कोशिश करते हैं ना, तब हमें ये तो पता चलता है कि आप कॉल कर रहे हैं, लेकिन हम उसका रिस्पॉन्स नहीं दे सकते और ये रिस्पॉन्स देना हमारा काम भी नहीं है। और रही बात आपके कॉल लगने ना लगने की, तो समझ में आता है कि आप कॉल कर रहे हैं, लेकिन आपकी कॉल को हम में से कोई भी, जी हाँ, सुन नहीं सकता। और वैसे भी कॉल तो जो कॉलिंग हमारा प्रोग्राम होता है, कॉल इन प्रोग्राम अलग होता है, दिन में होता है, तो जब भी फ़ोन इन प्रोग्राम हो तो उसमें आप बात कर सकते हैं। तो एक बार फिर आपको बता दूं कि मैसेज करें, छोटा करें और प्यारा सा मैसेज करें, बहुत प्यारा सा करें, लेकिन कॉल बिल्कुल करने की कोशिश

ना करें क्योंकि कॉल लगने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ सिस्टम में सारी चीज़ें फीड होती हैं। एक और मेरे पास मैसेज आया है, चलिए वो भी पढ़ लेते हैं। आरजे आरसी जी, गुड इवनिंग, नाइस सॉन्ग्स। जयंत लिखते हैं पटना से, नाइस शो, शुक्रिया। ये लिखा है प्रदीप जी ने मुंबई से, तो थैंक यू सो मच। एक और मेरे पास मैसेज आया है, उन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है। तो दोस्त, इतना छोटा मैसेज भी नहीं करना है कि अपना नाम ही ना लिखें। एक और मेरे पास मैसेज है, इसको मैं पढ़ूंगी ज़रूर, लेकिन किंतु परंतु एक और प्यारे से सॉन्ग के बाद। और पता है आपको दोस्तों, जो ये आवाज़ मैं आपको सुनवाने वाली हूँ ना, ये सच में बहुत प्यारी आवाज़ है। और इनके जो भी सॉन्ग्स हैं, जो भी इनकी आवाज़ में सॉन्ग्स हैं, सभी दिल पर ख़ास दस्तक देते हैं। और क्या कहूँ, यही कहूँगी कि दिल की वादियों में चाहत का मौसम है, दिल की वादियों में चाहत का मौसम है, और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियाँ महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आदि सोई आदि जगी सी लगने लगी हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल। जी हाँ, प्यारी प्यारी बरसात में और जब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो ना, तो फिर इस तरह का गीत संगीत दिल को ज़्यादा भाता है।

या दोस्तों, कहने को हर इंसान के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन कभी कभी हर इंसान यही चाहता है कि शब्दों पर आज लगाम लगा दी जाए, आज शब्दों को ना बोला जाए, सिर्फ और सिर्फ किसी को अपना चेहरा पढ़वाया जाए और दूसरे का चेहरा पढ़ा जाए। लेकिन इसमें भी कुछ तो प्रॉब्लम है। वो ये कि अब ज़रूरी नहीं कि हर इंसान चेहरा और आंखें पढ़ना जानता है। ज़रूरी नहीं जिस तरह से आप किसी की आंखों को पढ़कर उसके दिल का अंदाज़ा लगा लेते हैं, दिल की बात जान लेते हैं, वो इंसान भी जो आपके सामने है या आप उसके सामने हैं, वो भी इसी तरह की टेलीपैथी जानता हो कि किसी का चेहरा देखकर अनुमान लगा लिया जाए कि वो क्या कहना चाहता है और क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सच सच बात प्यार मोहब्बत और शिकवे शिकायतों की चले तो एक घंटा तो क्या पूरी रात भी कम पड़ जाए। टिक टिक करती घड़ी कुछ जताने की कोशिश कर रही है, कुछ तो इशारा कर रही है, कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। तो जनाब, जब चेहरा पढ़कर हम दिल की बात जान लेते हैं तो फिर टिक टिक करती घड़ी तो बिल्कुल हमारे सामने है और साफ साफ बहुत कुछ कह रही है। फिलहाल आपको सुनवाती हूँ एक और सॉन्ग। सच में ये सॉन्ग भी बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, दिल पर दस्तक जरूर देगा, ये मेरा वादा है आपसे।

जी हाँ दोस्तों, मेरे पास जो अगला मैसेज आया है वो आया है इंदौर से। ये इंदौर से जो मैसेज आया वो वरुण का है। और वरुण जी, शायद आपने मेरा पहला प्रोग्राम नहीं सुना है, आप थोड़ा सा लेट हो गए। थोड़ा क्या लगता है, बहुत लेट हो गए क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि दिल्ली में बारिश हो चुकी है और फिलहाल हल्की फुल्की बूंदें तो चल भी रही हैं। तो उनका कहना था कि ये बीच में मौसम का गाना कहाँ से आ गया। तो भाई देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें इंस्टेंट हो जाती हैं, तो उसके हिसाब से भी हमें कुछ देखना पड़ता है। एक और मैसेज मेरे पास आया है। ये मैसेज देखकर पढ़कर मैं बहुत बहुत बहुत खुश हूँ। चलिए, आपका पैचअप तो हुआ। तुम्पा आगे लिखती है, नमस्कार रेखा मैम, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, सॉन्ग्स आर वेरी गुड, प्लीज पास ऑन माई मैसेज टू आकाश, प्लीज टेक रेस्ट फूड। इन्होंने ये पहले लिखा था और अभी जो लिखा है उसे पढ़कर भी मजा गया। यू मैम फॉर ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच ब्यूटिफुल प्रोग्राम, प्लीज पास ऑन माई मैसेज। तो आगे उन्होंने ये भी लिख दिया है कि आप प्रॉपर टाइम टू टाइम मिल लीजिए। और उन्होंने बहुत सारा प्यार लिखा है मुझे, और सबसे बड़ी बात उनका पैचअप हो गया है। तो चलिए, ये तो सबसे सबसे सबसे खुशी की बात है, भले ही वो पैचअप मेरी वजह से हुआ हो या किसी और वजह से। एक और मेरे पास मैसेज आया है ऋतु का, वो लिखती हैं गोपाल पार्क में रहती हूँ और आपका सॉन्ग सिलेक्शन बहुत अच्छा है और आती रहिए, आपके चलाए हुए गीत मुझे बहुत पसंद आते हैं, लवली सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच। एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो उन्होंने पंकज जी के बारे में ही लिखा है। जी हाँ, तो जानती हूँ कि पंकज जी की आवाज़ भी ना एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन आवाज़ रही। हाँ, इस बात का गम ज़रूर है कि वो

आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन दोस्तों कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं, वो हमारे बीच हो ना हो, उनकी आवाज़ें, उनकी यादें हमारे साथ हमेशा हमेशा रहते हैं। तो चाहे वो गीतों के ज़रिए हो, चिट्ठियों के ज़रिए हो, या फिर फिल्मों के ज़रिए।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आयकर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट कर रहा हूँ। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: चलते चलते एक और मैसेज ले लेते हैं। प्रकाश

सोनिया का भानु प्रताप छत्तीसगढ़ से, वो लिखते हैं कि बारिश का गाना सुनकर बारिश का एहसास होने लगा। कब होगी बारिश, हमें इंतजार है। अगली बारिश में गुलमोहर और पीपल के पेड़ भी लगाएंगे और सुनने वाले सभी सुन ले, वो भी तैयार हो जाएं। तो बिल्कुल पेड़ तो हमें लगाने ही चाहिए दोस्तों। और हाँ, जहाँ तक बारिश का सवाल है तो आप जानते ही हैं जी हाँ, दिल्ली में बारिश हो चुकी है। और रही बात छत्तीसगढ़ की, तो मैं आशा करती हूँ कि आप भी प्रार्थना करेंगे कि हमारे यहाँ भी बारिश हो जाए, तो चलिए आपको भी राहत मिलेगी गर्मी से। फिलहाल अपने दोस्त आरजे आरसी को दीजिए इजाज़त, कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर ज़रूर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आकाशवाणी रेनबो सुनते रहिए। और कोशिश रहेगी, आप जानते ही हैं मैं वादा नहीं करती, क्योंकि वादे अक्सर टूटकर बिखर जाया करते हैं और कोशिशें कामयाब हो जाया करती हैं। तो चलिए अगले बुधवार यानी कि वेडनेसडे को फिर मुलाकात ज़रूर होगी। इसी वादे के साथ दीजिए इजाजत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को किसानों की आय बढ़ाने, खेती को अधिक लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिजोरम में 189 करोड़ रुपए के मिजोरम अदरक मिशन की शुरुआत की। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहुमा भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा है कि ये मिशन कृषि, ग्रामीण विकास और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालयों की योजनाओं के साथ मिलकर शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल में

गठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। इसके अलावा नई सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने कल ये मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 3 विकेट पर 161 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: किसी ना किसी के साथ अगर आपका एक बेजोड़ सा जो जोड़ है ना वो अगर मिल जाता है तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जीवन साथी या जीवन संगिनी के बारे में यहाँ बात कर रहा हूँ, ऐसा है कहीं भी आप खेल में देखें, आप सियासत में देखें, आप नौकरी में, शिक्षा में, कहीं भी आपको अगर कोई अच्छा दोस्त मिल जाता है, अच्छा पार्टनर मिल जाता है तो कई बार आपकी खुद की जो मुश्किलें होती हैं अंदरूनी वो आसान हो जाती हैं, थोड़ी सी सहज हो जाती हैं। देखिए कुल मिलाकर तो हमें अपने आप ही अपने सामने आई मुसीबतों से जूझना होता है, लेकिन जो एक अच्छी दोस्ती होती है ना, एक अच्छी दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग्स का जो ताना बाना, आपसी समझ का जो लेखा जोखा हम इसके इर्द गिर्द बुनते हैं, वो बहुत से मुश्किलों को सरल कर देता है और उनसे लड़ने में, उनका सामना करने में कमोबेश कुछ ना कुछ कमी आती है, आसानी होती है बल्कि कहना ये चाहिए, और लड़ाई आसान हो जाती है, सरल हो जाती है, उससे जीतने के कई रास्ते सुगम हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि चिंताओं का साथ छोड़ें और चिंतन का साथ पकड़ें। वैसे भी ये जो वक्त है ना, जो हो चला है अब 12:16 करीब करीब मध्य रात्रि के, इस वक्त हमने देखा है कि कई लोग चिंतन और मनन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चिंतन के जरिए, मनन के जरिए अपनी समस्याओं के हल खोजने की कोशिश करते हैं। एक तरफ है हम यानी आकाशवाणी रेनबो 102.6 जो हर घड़ी, हर पगडंडी, हर सड़क पर आपके साथ है, हर मोड़ पर आपके साथ है और कहीं ना कहीं आपको लिए चलते हैं हर उस खूबसूरत दौर में जो कभी ना कभी आज समेत हमारी जिंदगी का, हमारे किसी ना किसी पड़ाव का कभी ना कभी हिस्सा रहे हैं, उसका साझेदारी की है उन्होंने, उसके साझे रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। तो ऐसे प्रत्यक्षदर्शियों को अपना मित्र बनाएं, फिर देखें कैसे कैसे मुसीबतें आप पर हावी होना कम कर देंगी या फिर बंद ही कर देंगी। हमारा जो साथ मिला हुआ है आपको आकाशवाणी रेनबो का, वो खूबसूरत दौर में आपको ले जाने का होता है। इस वक्त मेरी कोशिश यही रहती है कि उन हसीन गानों को आप तक पहुंचाऊं जिन्हें सुनकर कभी हम अपना मन हल्का किया करते थे। तो आप आ जाइए इस मुहिम में हमारे साथ, हो जाइए हमारे साथ शुमार इस अभियान में जिसे हम कहते हैं जीरो आवर शो। और जीरो आवर शो लेकर मैं हाजिर हूँ रजत, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, और इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हम हाजिर हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं। देश और दुनिया के हर हिस्से, हर कोने से हमारे साथ जुड़ने के लिए अगर डाउनलोड नहीं किया है अभी तक भाई, तो आप जल्द ही कर डालें न्यूज ऑन एयर ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। मैं हूं रजत, आप सभी का स्वागत इस खूबसूरत महफिल में जिसे हम और आप मिलकर कहते हैं जीरो आवर शो।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो, अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए।

0: और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर। हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को किसानों की आय बढ़ाने, खेती को अधिक लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। इसके अलावा नई सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। CBI ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CB जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। 2 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉ

सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर टाइम हुआ है आधी रात के 1:06 और बॉलीवुड के नॉनस्टॉप हिट म्यूजिक आप सुनेंगे इस पूरे घंटे सुहानी रात शो में। तो शुरुआत करते हैं अंकित तिवारी की आवाज में द एक्सपोज मूवी के इस गाने के साथ। तो ऐसे ही नॉनस्टॉप गाने सुनते रहिए।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट

0: की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7

0: आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर सुहानी रात शो का अब ये लास्ट गाना और आधी रात के 2 बजे फिर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, लेकिन बैक टू बैक म्यूजिक इसी तरह से जारी रहेगा। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल।
1: जब नजरें मिली बेवजह पहली बार, जब इत्तेफाक से मुलाकात हुई अगली बार, तो ढूंढने लगा बहाने मिलने।

तेरी मुस्कान से रोशन हुई मेरी डगर, जब तेज हुई तुम्हारी सांसें और तेरे नैनों में था डर, तो संभाला था मैंने खुद को मगर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। 2 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। सीबीआई ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने केंद्र सरकार से मेडिकल कार्यक्रमों में नीट आधारित प्रवेश प्रक्रिया समाप्त करने और राज्यों को 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर दाखिला देने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का भी हवाला दिया। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। इसके अलावा नई सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आलू, प्याज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं।

0: 2:10 रात के और आप सभी का स्वागत आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। प्रोग्राम है भुलाए ना बने मेरे यानी रजत के साथ। इसके अलावा आप जुड़े हैं हमारे साथ न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी, देश और दुनिया के हर हिस्से हर कोने से आकाशवाणी से एफएम रेनबो से जुड़ने के लिए। अगर आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। बहुत खूबसूरत पहर है, बदली छाई है, कहीं कहीं बूंदा बांदी हुई है, ओले भी गिरे हैं अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें, लेकिन अलग अलग हिस्सों में ऐसा हुआ है, सब जगह एक जैसा मौसम नहीं है। लेकिन मौसम है बड़ा खुशगवार, जिस तरह से गर्मी अपने जलवे पर है वहीं कुदरत झमाझम भी कर देती है और आपको बता देती है कि देखिए तपती दोपहर के बाद सर्द शाम भी आती है। और इस मामले में अगर हम कहीं भी किसी भी तरह से उम्मीद ज़्यादा नहीं हो पाते, कहीं कहीं हमें लगता है कि नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं भी होता है, तो एक बार हमें बादलों की तरफ, आसमान की तरफ देख लेना चाहिए, जहाँ रात के अंधेरे से भी सफ़ेद बदलियाँ काली घटा के पंख ओढ़े कहीं ना कहीं उस आसमान के किसी ना किसी कोने से झांक रही होती हैं और हमें बता रही होती हैं कि भाई धूप के बाद अंधेरा, सर्द अंधेरा भी है, सर्द शाम भी है। तो चलते रहें, चलते हुए ये परवाह ना करें कि ज़मीन में कितनी तपिश है, फर्श से हमारे पांव जलेंगे नहीं जलेंगे, क्योंकि एक ना एक घंटे बाद, दो घंटे बाद कभी ना कभी शाम आती ही है और ठहरने का मौका देती है, सोचकर विचारने का अवसर देती है और एक ठंडक जो साथ लाती है ना, वो उसमें विचारशीलता की महक भी होती है। तो अपने आप को उम्मीद ज़्यादा रखिए, गिरने मत दीजिए, उठाए रखिए, आपका परचम एक ना एक दिन ज़रूर लहराएगा। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर मैं रजत आपके साथ और प्रोग्राम है भुलाए ना बने। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत तहे दिल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती। सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना. 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती.

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपये प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी

दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। वे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। सीबीआई ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने केंद्र सरकार से मेडिकल पाठ्यक्रमों में नीट आधारित प्रवेश प्रक्रिया समाप्त करने और राज्यों को 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर दाखिला देने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का भी हवाला दिया। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद आज 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित करेगी। परिणाम सुबह 11 बजे घोषित किए जाएंगे। विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से नतीजे देख सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आधी रात के 3:06 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और अब शुरू होता है मिडनाइट मेलोडीज शो, जिसमें आप सुनेंगे नॉनस्टॉप बॉलीवुड के हिट गाने। तो शुरुआत करते हैं अभय जोधपुर की आवाज में फ्रॉम द मूवी जीरो से इस गाने के साथ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

रामायण या पौराणिक प्रसंग सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आयकर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

महामर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक

0: मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। वे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। सीबीआई ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद आज 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित करेगी। परिणाम सुबह 11 बजे घोषित किए जाएंगे। विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से नतीजे देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 60 गेंदों में नाबाद 105 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रात नहीं, अब तो सुबह है और करीब करीब वो वक्त आने को है 30-40 मिनट के बाद जब सूरज की पहली किरण प्रकाशमान करने के लिए बस कूद पड़ेगी धरती की तरफ और एक नए दिन, एक नई उम्मीद, नई सुबह की होगी शुरुआत। फिलहाल जो ये कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है ये भी उम्मीदों से भरा कार्यक्रम है, उमंगों तरंगों को लिए एक छटाओं को आमंत्रित करता कार्यक्रम है जिसे हम

0: बरसों से सारेगामा कहते आए हैं। जी हाँ, सारेगामा नई सुबह की, नए दिन की वो शुरुआत है जिसे हिंदी फिल्मों के खूबसूरत, एक और खूबसूरत और अजीम दौर के संकलन से हम शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं एक नई सुबह को एक नई खूबसूरती देने की, उसे नई नज़ाकत और नफासत देने की, एक नया शफाक देने की। और इसी शफाकत को हम कहते हैं सारेगामा। आकाशवाणी रेनबो 102.6 आपने किया हुआ ट्यून इन, जिस पर आप जुड़े हैं मेरे साथ। और प्रोग्राम का नाम एक बार फिर बता दूँ, सारेगामा। मिले जुले गीतों को लेकर हम हाजिर होते हैं हर सुबह इस कार्यक्रम में। फिलहाल मैं हूँ रजत, आकाशवाणी रेनबो 102.6 102.6। इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप NEWSONAIR ऐप जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं अगर अभी भी नहीं की है तो। इस ऐप के जरिए आप निर्बाध कहीं से भी कभी भी सुन सकते हैं आकाशवाणी रेनबो दिल्ली के प्रोग्राम, ट्यून इन करके सर्च करके। फिलहाल चल रहा है, जारी है सारेगामा और मैं कर रहा हूं आपको सुप्रभात के साथ आमंत्रित इस प्रोग्राम में। स्वागत आप सभी का।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
6: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
6: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
6: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
6: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और